नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी तया यो सूरा तुगरी शिवा थे।